हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलू मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनियां ही उन्हां दियां मंगां, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा, जिन्ने मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगां, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगां तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो, कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उहनू सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे धन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी।

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते ने मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। ते मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू एक गल समझांदे ने

मंगली है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जेड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

कोई कहे, अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनते हैं, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं, अंतर ज्योत राम प्रगासा, जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए तो फिर वो इस कहानी नु जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है, गुरमुख विरले जानी, कोई विरला गुरमुख इस कहानी नु जान

तीन बंदा इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नू गुरु दे हवाले करदा है, वो प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नू समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पहचान करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

कहिंदे ने सुरमा। गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर जीव

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नाश हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देण वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नूं जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारिआं विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी

मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारियां भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा है, जिद कोल एक चीज है उसनू दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रचिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे तो दुख कलेश

थानू ज्ञान होवे। गुरु की है, गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं।

समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। तो सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है। इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तां भी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा हो अंधेरे विच हुंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा, अपने सुख वास्ते दूसरे का हक खाना, दूसरे

बगैर परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु का उपदेश सुनते ने।

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपां कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा हुंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधर और माया दे पिछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तू थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे इहदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा। ते हाथी समझ गया, मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए का जोर चलिया, ते हाथी

परमेश्वर किस तरह अपने प्यारियां दी अरदासां सुनता है। परमेश्वर भगतां दी रखिया वास्ते अपने दूतां नूं अपने प्यारियां नूं भेजदा है। विष्णु भगवान ने आप नदी किनारे पहुंच के तंदुए दियां तारां कटियां और हाथी दी बंद खलास कीती। ए हाथी पानी विच बाहर निकलिया, नदी दे किनारे आया ते की देखदा है, सामने विष्णु भगवान खड़े हैं। बेशक जोन हाथी दी है पर सोजी है, हाथी नु सारी सोजी है, फिर भगवान सामने खड़ा है ते जीवन दी सोजी क्यों ना होवे। अगलियां दोनों लता निवा के हाथी ने नमस्कार कीती और मानो पुकार पिया करता है, भगवान कृपा कर इस जून दे विचों साडा छुटकारा कर, बड़ा दुख भोगे।

पुकार जो सुनी सुनी जा सकती है, तेनू ते परमेश्वर ने सोझी दीती है, रसना दीती है, समझण दी सोचण दी शक्ति दीती है, फिर तू क्यों नहीं उहदा सिमरण करदा। कर सिमरण, परमेश्वर तेनू भी मिलेगा।

गुरु जी दी तारीफ दी गल सुन के चंदू दीवान खुश होने दी बजाए गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुने बहरोल कचोला दे महवाक अनुसार चंदू दीवान कहन लगा ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव एक फकीर किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधा दा डेरा ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कहन लगा भावे तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लिया उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदिया नहीं सुन सकदा। गुर की निंदा सुने ना कान कानो घूर के पिछा हटाउंदा ए जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा हंजू वेख के कास तो हसदा ए

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़िया।

सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, और बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदिया स्वादलियां लगदिया कहते मिठियां समझ के उन्होंने खाया, पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्होंने रिजल्ट जो है अखीर दे जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगंग तरोगंग, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगंग तरोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कुछ सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी जगह होर बाणी चाकदे हैं, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नूं खास करके ग्रिस्तियां इस समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दिती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असं कई दफा सोच लेने ना कि असं तो हम ग्रिस्ती लोग हाँ, असं कोई साधु संत थोड़ो अते अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है असं ग्रिस्ती हाँ। हुण गुरु साहब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन ये नहीं असं सुनिया, ये नहीं असं सुने, असं सिर्फ इन्ना ही सुनिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुनिया, ठीक है ना। गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया ये दसना भी मुश्किल है, इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, तो सानू शायद किसी ने दसिया भी ना होगा। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए ग्रिस्ती जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होने के नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू ग्रिस्ती है इस करके यू आर अलाउड, वे कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे

है गृहस्थि, इसके अर्थ सुनो। सो गृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थि वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्ह का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हें इंद्रिया दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रिया दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वह शरीर दे ही तल ते रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया, उसनू दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा। वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, दोबारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और ये भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, ये भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थी विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इना नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुओं वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नू कटावे, अपनी नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनी नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे, बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही, सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जब तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੋ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਉਸਨੂੰ।

कि हे निरंकार साडे कलयुगी जीवां दा सुभाई ऐसा है कि जेड़ा हर वेले साडी रख्या करदा है, हर वेले साडे नाल है, जिदे सदके असी ए संसार दे नजारे संसार दे खेल वेख रहे हां, वो सानू याद नहीं रहा, असी भुल गए हां उसनू। जेड़ियां वस्तुआं सानू तोड़दियां हन असले नालों परमेश्वर नालों, उना वैरियां नाल असी प्यार पा लिया, जिन्हां ने साढ़े नाल नहीं चलना उना नाल तां प्रीतां पा लिया, जेड़ा हर वेले नाल है उनू विसार छड्डिया। संग सहाई सो आवै न चीत, जो बैराई तांस्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह भीतर वसै। ए रेत दी कंध है, ए जेड़ा साडा शरीर है ए रेत दा घर है। पहले बचपन फिर जवानी, जवानी ने बचपन नू खा जाना ते बुढ़ेपे ने जवानी नू खा जाना ते काल ने बुढ़ेपे नू खा जाना। ए रेत दा घर है,

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कार्य स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले। तो अगली पंक्ति

सत्संग आशा जी दीवार द्वार लगा के कीर्तन भी समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आज दी चाह सेवक बोलो तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो भी बेनती की थी कि कई प्रेमी कहने लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की थी सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हम प्यारी सास संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार के कीर्तन का भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आप आसा राग च लगा।

जिन्होंने बाणी नू कुछ समझिया है कीर्तन कर रहे सन इस तो पहला ते पढ़ रहे सन धन धन गुरु जिन नाम अरातेया आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए सवाल की तै बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई बड़ी बार कीर्तन सुने बड़ी बार कीर्तन कीता पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पाठ करदियां ने ते जदों पाठ करन तों बाद जितने सफे हो जान कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे साडी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे सवाल कीता ए बाणी की है जिसनू बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो ए बाणी की है साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने जिन्हां नू असीं वरके कहने हां जिन्हां नू असीं पत्रे कहने हां जिन्हां नू असीं कई वार होर सुचज्जी बोली विच अंग कहने हां ते सात संगत आ वेखो तन है इसदी कलम ते तन है ए लिखण वाला कहण लगा ए अखर नहीं ए वरके नहीं ते फिर की है ते सात संगत अज तू ए प्रण कर लो जो मैं कहण लगा अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब नू इसे तरह समझना है जिसने कलम चुकी है ओ लिख रहा है ओ कहंदा ए अखर नहीं ए वरके नहीं ते जिदे सामने लिख रहा सी ओ कहन लगा फिर की है ओ कहंदा जो मैं वेखे ओ मैं लिख रहा जो मैं वेखे ए अखर नहीं ए वरके नहीं ए सीना ए गुरु नानक दा कमाल है

जोबन पर लिया। सुंदरता का मान, जवानी का मान और अक्सर इस मान दे विच इंसान वो कम भी कर बैठता है जो नहीं करने चाहिए। पावत रलिया जवानी दे मान विच, जोवन दे मान विच नचदा टपदा इंसान किसी की परवाह नहीं करता। तेरा ये मतलब नहीं कि सोना रूप नहीं होना चाहिए या जवानी नहीं चाहिए। साहब जी कहते हैं जो सोना रूप है ते मुबारक।

तू हाथी ते सवार हो गए, गहने पा के कीमती वस्त्र पा के सिर ते सोने का छत्र चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया। तू भावे समझदार है, मैं बहुत

प्रकृति का रूप भी हो गए, फिर जवानी भी, धन दौलत भी, तो फिर कोई विरला ही मनुख होता है जिहड़ा परमेश्वर का सिमरन करता है, उसका शुक्र करता है। नहीं तो बहुत कई लोग जवानी, सोहना रूप, धन दौलत विच पै के रब नूं ते भुलदे ही ने, वो अपने आनू भी भुल जाते हैं। एक बारी रसना पवित्र करो, प्यार नाल आपू सदना कितों तक इंसान भुल सकता है, कितों तक रब नूं ते लोग भुलदे ही ने, अपने आनू भी भुल जाते हैं। रब नूं अपना इस वास्ते नहीं कहा क्योंकि आम लोग रब नूं बेगाने ही समझते हैं, आखो सतनाम सी, क्योंकि जे अपना समझन

वो परमात्मा हर जगह है। ते बच्चे भी कहते हैं ना, वो खुदा हर जगह है। मौलवी रोज पढ़ाता है ते बच्चे रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं सुनते हैं, हुण यह गल याद हो गई, एक खुदा सब जगह।

तब पिता ने किया बेटा वो ती ज्योति जोत समा गई, पर उन्होंने जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जा

पिता ने दिता देखिया बेटा ये 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब च पाया धर्मशाला पहुंचे है अरदास करके ये सारिया संगत उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर गए हमने मन में सोचता जाता है गुरु का दरबार कैसा होगा क्योंकि उनकी बाणी में बड़ा आनंद है वो गुरु से समाधि ला के बैठा होगा मैं जाके बुलावांगा वो नेता भी नहीं बोलना क्योंकि साधुआं की संगत करता सी जो देखता सी उसी तरह गुरु साहिबां

संगत गुरु दरबार बैठी जिस तरह आप बैठे। कीर्तन की समाप्ति हुई, कुछ संगतां बैठिया रही तो साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछ रहे हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रस आया। हुण जिहड़े भी रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है, क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता। ते साहिब जी सहजधारी नूं पुछदे ने, ओ सिखा तू नहीं बोलदा तेनू कैसा रस आया। और ये कहता जे मैं आखा सुभा दा रस है, पहला मैं कदी कीर्तन सुने। जे मैं आखा जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, ज्यों ज्यों कीर्तन सुने मन भटकया नहीं, मन दे विच ही टिक गया। आपको सतनाम श्री हो। कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है। आपको सतनाम श्री हो। पानी सुन के मन विच संतोख और सिदक आ जाता। साहब जी कहन लगे सिखा निहार। एक महीना सेवा की और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबान भेट करके मत्था टेके आए। ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता को नहीं साडे वालों। एक सरबलोह का कड़ा दिता जेड़ा कड़ा सी हाथ विच बने। नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े का अद

खुशी खुशी आनंदपुर साहब को तुरे, पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब को बाहर आया ते सारा आनंद गुआच गया। आखो सतनाम श्री माया वाली फिरती फिर जाग पे, जिवें असी कई बार कीर्तन में बैठे होने हैं ते बड़ा आनंद आता, जो गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, और गल्लां याद आ जाती। इसे तरह आनंदपुर साहब को निकले तो सारा आनंद गवाच गया। कहन लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड़ के आ गया, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जिहड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहिंदे सन जो मंगेगा तैनू मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैनू 1000 रुपए कितों दे देने। आपको सतनाम सिर्फ उदास हो गया ते गुरु की निंदा करता होया आनंदपुर साहब।

एक महीना सेवा भी की थी। 600 रुपया मैं गुरु नू भेटा किया, गुरु ने मैनू की दिता है एकड़ा प्रसाद जेड़ा मेरा पिता का रोज बनाता है, एकड़ा दिता है लोहे का नाले वचन दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, पर ध्यान सिंह तू दस इस

जे तेरे गुरु ते भरोसा है ये कड़ा ते वचन कर ले जा। पर हां जे भुखा तू दाम का ता लेकर अपने पाए, पर जे तेरे दाम पैसिया की भुख है ते गुरु जी ने दया ना कर ए ले 600 ते 5 रुपये वाह। ते मन विच सोचता है मसा मसा कोई फसे किधरे ध्यान सिंह भी हथों ना निकल जाओ। कहन लगा हम प्रतीत है दाम मैनु माया ते भरोसा है गुरु जी ने। हम प्रतीत है दाम की जो हमको दे दे वचन दिया तू दाम दे साढ़े पांच दिले आखो सतनाम सिंह। कहता तू साढ़े 500 ही दे पर दे दे, पर ध्यान सिंह ने 605 ही दे। गुरु का वचन कड़ा ले लिया ते आखिया कड़ा प्रसाद ले जा क्योंकि ये तेरे पिता वास्ते। बड़ा खुश दिल्ली आया 600 रुपए दे रतन खरीदे पाली शहर आके बेचे तो दो थैलियां सोने दिया मोहरा दिया भर गई ते हुण बड़ा खुश ते बड़ा चार। अगे ते गुरु की निंदा करदा सी हुण सिख की निंदा भी कर दी। कहन लगा गुरु ते मिलिया सी ते ध्यान सिंह

बिस्तरे पे डोल देता, बिस्तरा गिल्ला हो गया, कपड़े गिल्ले हो गए, हरी सिंह की जात खुल गई और नींदर नहीं आती क्योंकि कपड़े गिल्ले, एक सर्दी उठ सकदा नहीं, उठ सकदा नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा, पासे मारदा है बिस्तरा गिल्ला, नींदर नहीं आती पर सास संग मां ते फिर मां ही मां पासा मार के लगी गई, अखा बंद पर जागदी, अज मां का मन बड़ा दुखी हो रहा है, अज मेरे पुत्र नो नींदर नहीं आ रही, दिन चढ़िया

हरी सिंह की गल तेरी अखा क्यों लाल ने। हरी सिंह कहन लगे मां राती बिस्तरा गिला सी सारी रात जागदा है इस करके अखा

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्ताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चा नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दित्ती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा, फिर लोग

मोले तार बारिश करे। बारिश जोरन हरी अपने नितनेम अनुसार उठ के अपने मुर्शद नु इशनान कराउन वास्ते पानी गर्म करना चाहुंदा है पर अग बुझ गई। बारिश करके जोर दी बारिश होण करके अग बुझ गई। पानी किवें गर्म कीता जाए जे अज पीर नु इशनान ना कराया तो 12 सालां दी कीती होई खूह च पै जाएगी। अज आखिरला दिन सी हरी दी बंदगी संपूर्ण हो 12वें साल दा आखिरला दिन फरीद नु रब दे मिलन वास्ते कितनी कालना कालनी पई। जंगलां दे पत्ते धो के खाना।

खोजत खोजत भई बैरागन प्रभ दर्शन को हों फिरो तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन माई रजनी ने माई रंगपड़ी ने किया फरीदा किसे मुर्शद की सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु प्राप्ति मुर्शद तू हो गई कोई गुरु धारण कर बाबा जी वचन करते सन कितना जप तप क्यों ना कर ले इंसान जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता कितना कर तीजी पातशाह ने इक्की वेरी तीर्थ यात्रा की थी गंगा मैया की स्नान की थी हर साल जाते सन और भी कर्म कांड दान पर करते सन पर बैरागी ने कह दिता सी ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा गुरु जी गुरु मिल गया भाई सबो कुछ ते असी गुरु वाले तां बनते हैं जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु फिर अस गुरु वाले बन जाते गुरु का बड़ा माण है ये गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं जे पटा ना आवे ओनू फिक्र ही फिक्र जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया खसम का बड़ा माण निगुरे का भी कोई चीज लावारस कुत्तियां दे तरां मार मुकाया जांदा है उन्हां दा जीवन किसे काम दा है गुरु दी वड्डी शक्ति गुरु दा वड्डा आसरा है गुरु दा बड़ा मान है बुल्ले शाह ने लिखिया ना मैं जब तक पूजा की थी ना मैं गंगा नहाया ना मैं पंज नमाजां पढ़िया ना मैं हज कराया बुल्ले शाह मैनूं मुर्शद मिलिया उस एवें चा बख्शाया एवें जिस ते मेहर कर दे भाई मेरा स्थान माई रंगी ने कहा फरीद कोई गुरु धारण कर चला जा आज मेर ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है ओनू जाके तारण ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री फिर फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर कितना समा हो गया 12 साल आज अखीरला दिन है पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाई है इम्तिहान लगी है फरीद दा पूरा अंदरों सेवा करदा कि बाहरों करदा इम्तिहान लिया अज बारिश हो रही जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई किथों लियावां अग उच्ची थां ते चढ़ गया दास कई वारी अजमेर गया है सके मुसलमाना का दूजा मक्का है अजमेर शरीफ बड़ा सुंदर बनया होया है वो जगह भी तकी जिथे फरीद ने उची चढ़ के पहाड़ी के उत्ते अग भी पाल की थी दूर वेखे अग का लिशकारा पे तुरन लगा ख्याल आया मना बारिश बड़ी जोर दी किस तरह पहुंचा